मुहब्बतें और भी बढ़ती है बिछड़ जाने से, मुहब्बतें और भी बढ़ती है बिछड़ जाने से।

0: ना,
1: वाह जी,
0: तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया मेरी, तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया।

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उत्थे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वा।

अड़िया लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस

जो दुनिया पत्थर मारे, हंसी ओ भी हंस हंस खा बैठे। तेरी खातर सजना, हंसी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द न जाने, हंसी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

विस्फोटे इकट्ठे कर ले, अपनी झूठी शान दिखाकर बेसमेंट सब भर ले। रजनी नू पता नहीं लगना।

0: इंसाफ दे पाऊंगा,
1: हाँ जी हाँ जी
0: जेडी
1: हाँ
0: राह
1: जी
0: तुर पे
1: बिल्कुल
0: आएगा, जे
1: बिल्कुल
0: उन्होंने लगता है कि मैं इन्नी मेहनत कर सकता है या मैं इन्हों इंसाफ दे सकता है, वो बिल्कुल उन्होंने उस लाइन टो द लाइन जिन्होंने आप कहते हैं
1: हाँ जी हाँ
0: वो
1: जी
0: कर
1: हाँ
0: सकता है। जे उन्होंने लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ है, मैं सिर्फ देखा देखी आ रहे
1: उधर आ
0: हैं।
1: गए हैं।
0: उस वेले देखो अकेला डिसीजन लेना, कई कई बच्चे ले भी लेंदे ने,
1: हाँ जी
0: बट
1: हाँ जी
0: उस
1: हाँ जी
0: वेले अगेन जे उन्होंने कोई कोई सीधे राह पा देवे, जिन्होंने आप कहते हैं
1: जी
0: कि सीधे राह पाना,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: पेरेंट
1: बिल्कुल
0: टीचर कह दे कि भाई दिस इज योर कैलिबर, कैलिबर तुसी ये कर सकते हो, ये तुहाडे तो नहीं हो सकता। जो उस वेले
1: जी
0: उन्होंने क्लियर क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाए तो वह काफ़ी जरा आने वाले जो साल है, इनफैक्ट आने वाला पूरा करियर वो जरा बन सकता है या बिगड़ सकता
1: बिल्कुल
0: है। ये
1: बिल्कुल
0: अगेन स्कूल साडा एक सिस्टम जो टीचिंग का सिस्टम है
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: इन्ना
1: हाँ जी
0: स्ट्रोंग होना चाहिए है। टीचर्स कई बार नहीं पता होंगे कि अगर करियर के बच्चे तो की कराना है, थोड़ा उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए अपने जोड़े विद्यार्थी है कि अपना जिवें आपका बच्चा हो
1: हाँ जी बस
0: वो
1: वो मेन
0: समझ
1: चीज
0: के
1: है।
0: जे
1: हाँ जी
0: वो
1: हाँ जी बिल्कुल
0: उन्होंने काउंसल कर सकते हैं तो बहुत उन्होंने वधिया रहता, वरदान साबित हो सकता है ये गल।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल जी ये तो गल ठीक है जी। जे उन्हों नूं मौके ते कोई गाइडेंस मिल जाए तो एक आप सुनते रहने हैं कि जेडे दूसरे देश आ उन्हां च तां बच्चों का टैलेंट समय समय से क्लासा वक्री वक्री क्लासा अलग अलग लैवल से चैक करते रहते हैं कि यदि मेंटल एबिलिटी की है ये जो स्किल्स कि उन्होंने अपने आप ही उस लाइन च पा देंगे। वो साढ़े ये बड़ी वही घाट है लगती है कि यहोजा कोई टैसटिंग सिस्टम मोनीटरिंग सिस्टम बहुता नहीं है। तो यदि अगर स्कूल लैवल पर कोई तुम्हें की लगता है कि कुछ होना चाहिए इस तरह का ये क्लास के
0: कई स्कूलों से निजी स्कूलों से स्पेशली इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी जरा वर्किंग हैगा।
1: जी
0: सरकारी स्कूलों से भी समय समय से कोशिश होती रहती है, पिछले कुछ समय से सरकारी स्कूलों से भी ये सिस्टम चला है कि बच्चों की ग्रेडिंग करके कि उनका मेंटल लेवल किस स्टेज पे हैगा उन्होंने उस हिसाब से पढ़ाया जाए। बट
1: जी
0: अगेन इस प्रॉब्लम ये होती है कि ये जेडे करन ग्रेडिंग करन वाली साढ़े को वर्कफोर्स है वो प्रॉपर जी है उन्होंने आप वेल ट्रेन होना चाहिए
1: उन्हां
0: हैगा।
1: दी ट्रेनिंग है
0: ये एक बहुत ही ह्यूज जो प्रोजेक्ट हैगा जी आप गल कर रहे हैं, ये
1: हाँ
0: मैंने
1: जी
0: लगता आने वाले समय के भविष्य के इस तरह सिस्टम जरूर एस्टैब्लिश हो जाऊगा।
1: हाँ
0: पर
1: जी हाँ
0: फिर
1: जी
0: मैं एक बार गल कहना चाहूँगी, भारत अजिहा देश है जिस किन्ने ही गेरे साइंटिस्ट स्पोर्ट्स
1: वाकई
0: पर्सन किन्ने वधिया शख्सियत जड़े ने
1: जी।
0: अपने देश तो निकले ने वो बिना सिस्टम ने निकले ने, जेडी सिस्टम की आप गल
1: हाँ
0: कर रहे हैं
1: ये नहीं है तभी वो
0: तां
1: है
0: भी दे एग्जिस्ट। सो बेसिकली
1: हाँ
0: कुछ है अपने सिस्टम च इस तरह का कि स्टिल इन्हां चीज़ों के ना होने के बावजूद जेडे कि वेस्टर्न देशों के विच है कि ये सिस्टम
1: बिल्कुल
0: अपना सेल्फ जेडा सस्टेनेबल है। कुछ
1: ये
0: है इनहेरेंट चीज़ है साडे देश के विच कि इन्नी महान शख्सियतें जड़ी हैं वो साडे देश तो आईया ने बिना इस सिस्टम
1: कुछ
0: के,
1: तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं
0: मिट्टी
1: हमारी
0: नहीं
1: ये गल
0: हमारी।
1: तो है
0: बाहर के सिस्टम जो आप ब्रेक दे विच कोचिंग दी गल भी कर रहे थे,
1: जी।
0: कोचिंग दे विच भी एक एक एक व्यक्ति दे अंदर दी गल हुंदी है। कई बंदे
1: जी
0: होंगे वो कहते हैं कि बिना कोचिंग दे असी एक स्टेप अगे नहीं ले सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कुछ
1: जी
0: बच्चे होंगे हैं स्ट्रीट लाइट दे विच रोशनी दे विच पढ़ के भी जड़ा है अज बड़ी उचेरी थावां ते, मैं अपने
1: जी
0: बैच की गल भी करदा आईएएस
1: जी
0: बैच दे विच मेरे
1: अच्छा
0: नाल
1: जी
0: कई इस तरह दे बच्चे सीगे बिल्कुल ही जड़े उन्हां कोल रिसोर्सेज नहीं सीगे पढ़न लई,
1: अच्छा जी
0: वो कितने जॉब कर रहे थे, कोई
1: जी
0: किसी
1: जी
0: किसी दुकान पर लगे हुआ सेगा, बट
1: ओके
0: जरा समय उन्होंने बचता सेगा वो किताबा लैके आते, कोई रद्दी की दुकान तो किताबा लैके आता
1: क्या बात है क्या बात
0: उतों
1: है
0: उतों पढ़ाई कर करके अपने सेल्फ स्टडी कर करके वो उत्थे तक पहुँचे। सो बेसिकली जरूरी नहीं कि सानू सारी सुविधावां मिलनगियां ताई असी लाइफ से कुछ बन सकते हैं, जे मन च तुहाडे हैगा विश्वास हैगा
1: जी
0: तुहानू
1: जी
0: अपने
1: जी
0: आप ते विश्वास हैगा तुसी कुछ भी अचीव कर सकते हो।
1: सुविधावां दी घाट दा रोना रोना एक बहानेबाजी कह सकते हैं आपां कि है
0: बिल्कुल
1: नहीं है। फिर भी रिसोर्सफुल बंदा जिहड़ा है वो कुछ ना कुछ कितना ना कितना अपना सब तो वड्डी गल मैनूं लगदी है कि जिहड़ा तुहाडे कोल कोई टीचा होना जरूरी है कि
0: बिल्कुल
1: तुसीं कितें पहुंचणा है ये साधन फिर बंदा जुटा लैंदा है
0: अपने आप जुटा लेना
1: साधन
0: बिल्कुल।
1: जुटा लैंदा है बिल्कुल जिवें तुसीं उदाहरण दित्ती है जिहड़ा लोकां दी। तो वाकई उहनां नूं पता सी कि कोई ड्रीम है उहनां दा उहनां ने रियलाइज़ करना है तो वो किया। उहदे लई चाहे उहनां ने रद्दी दी दुकान तों किताबां लईआं चाहे उहनां ने कुछ भी किया बट दे डिड उहनां और वो सक्सेसफुल भी होए। तो
0: मन
1: ये
0: में एक जो तुसी ठान लेंदे हो ना, एक मैनूं हिंदी की लाइन याद आ रही है,
1: जी जी जी जी
0: लहरों को शान देखकर
1: जी
0: ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है,
1: हाँ
0: हम जब
1: बिल्कुल,
0: उठेंगे तूफान बंद कर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है।
1: क्या बता, क्या बता, वाह जी
0: और
1: वाह,
0: आप
1: हाँ
0: जब एक बार मन में ठान लिया कि मैंने
1: बिल्कुल।